कहु नानक हम नीच कर्म शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबाच बेंती चौपाई।

तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो।

तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो मर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

सेवकन को सगुन सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिय सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सं

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां।

कल महे हो पुन्न गुण गोविंद गाय, सबसे नु कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवे तो दया। सलोक महला पंजवा, अंतर गुरे आराधन जेवा जप गुरना, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरना,

डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ।

0: हक पराया
1: जोड़ जोड़ के धरदा माया
0: मार मार के हक पराया
1: जोड़ जोड़ के धरदा माया
0: पछतावेगा आया कर बे।

समस्ति स्वरूपे ब्रह्मंगी परमाथे समस्ति विबुद्धे कलंकं विनान्दे कलंकी स्वरूपे नमो राधेश्वरं परम रूपे नमो जो जुगेश्वरं परम सिद्धे नमो राधेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणी नमो अस्त्रपाणी नमो परम गाता नमो लोकमाताय अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जो जुगेश्वरं परम जुगते नमो देता नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोहर्ता नमो नारूपे नमो साह नमो भूपे नमो दान दाने नमो मारमाने नमो रोग रोगे नमस्तनिशनान नमो मंत्र मंत्रं नमो जन जंतरं नमो इष्टिष्टे नमो

तत्तं गा तत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो गान गाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलाय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादं विभुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अपंगी स्वरूपे।

धरियो सिर काहू ललिंगरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं काहू पछा को सीसन वायो को बतान को पूजत है पशकू मृतान।

पौड़ी सच्चा स व्यक्तु जिन सच्चो सच वर्ताय जिस्तु देह तिस्मिल सतात निहच कमाया सदगुण मिले सचपान के हृदय सच बसाय मूरख सचन जान ने मन मुख जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे

पौड़ी तुरे पलाने पौड़वे करंगी रम सवारिया कोठे मंड माडले बट कृपा सारिया चेज करण मन पांद्र पुजनाई हारिया कर फुरमाश खाया वीक महल तमरण विसारिया जराई जो बन हारिया।